0: काफी मनु तुनाई दशम पहा अनु तुनाई दशम हाथ लखंड रेडियो आईटीएन सभी श्रीलंकीय हंड
1: विलम सवस हतरा है।